0: କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମନ ଦେଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦେବ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବୈଷ୍ଣବୀ। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों

0: को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्ली रु। आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती। आरंभ करुछु आज सकाळर वंदना कार्यक्रम। प्रथमे सुनंतु संस्कृत वंदना। पुरातन रचनारे शिल्पी हेले जगन्नाथ पाणिग्राही।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलू राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: बढ़ई चिंता
1: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यात्रा समय रे हेलमेट किंबा सीट बेल्ट रो उपयोग अवश्य करंतु
0: एणु व्यवहार कर हेलमेट बेल्ट पुणी रास्ता रो नियम माने सदा कर चलाचल
2: आकाशवाणी जयपुर समय सकाळ 8:00 हेबाकू जाउची सुणंतु प्रथमे समाचार प्रभात परे मॉर्निंग न्यूज रिले करी प्रचार करछु आकाशवाणी दिल्ली रु परे परे सकाळ 8:30 शुणिबे पीठ परिक्रमा संपर्क रे बारिपदार इष्टदेवी मां अंबिकांक संपर्क रे रिले करी प्रचार करिवु आकाशवाणी कटक केन्द्र रु
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया नए अध्यक्ष किए नियुक्त शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया

0: पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का

0: नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत

0: पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centres of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons

0: ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରି ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ମା ଅମ୍ବିକା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି।
1: ମାଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ସବୁ ଦୂର ହେଲେ।
2: जब भी हम लोग कुछ लेके आते हैं भगवान के सामने, लगता अपना पूरा होता है, इसलिए तो हम लोग भगवान के आगे आते हैं ना।
1: माँ बोली तो जिनस गोटे अच्छा ना आज्ञा, ना श्रद्धा कमी हम हजार हजार लोक किए आश्चय माँ को किसी शक्ति अच्छी
3: निष्ठा भक्ति कलजुग दरकार, ना हमनी ये संसार समस्ते पाप कर किसी तो पुण्य अर्जन करा दरकार। आम जेनेसन के सब नहीं से रकिंग म्यूजिक रे ही दिन चल जाए, कितु आम मानक आम जो झील पिला आम जो माँ हम जो बो हम जो

0: सबु बैंक रे अलग अलग केवाईसी कागज पत्र गोटिए चाबी हे थांदा कि
1: अच्छी ना बापा सीकेवाईसी आईडी
0: सीकेवाईसी माने
1: बैंक आपण को केवाईसी डिटेल सीकेवाईसी रजिस्ट्री रे अपलोड करी थाए आ आपण को मिली थाए गोटे अनन्य 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी जहां सबु आर्थिक आदान प्रदान रे वैध होई थाए गोटे जगह रे केवाईसी अपडेट द्वारा बाकी बैंक वित्तीय संस्था रे भी अपडेट होई जाए
0: वाह आरबीआई कहे
1: सुरक्षित बैंकिंग आड़ को प्रथम पदक्षेप
2: मध्यस्थता ड्राइव 2.0 मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रो एक नूतन प्रचेष्टा आपणकर मामला कोर्ट रे वर्ष वर्ष धरी चालु छी कि वर्ष वर्ष धरी कोर्ट रे न्याय पई अपेक्षा करूछंती कि एबे आसी छी एक सहज द्रुत एवं प्रभावशाली उपाय मध्यस्थता कौनसी खर्च बिना आपण निजे भाग नै आलोचना माध्यम रे आपणकर विवादर स्थायी समाधान करंतु दुई पक्ष परस्पर बसिकि सहमति रे सहजरे मामलार समाधान पाई परिबे आज ही निकटरे थिबा कोर्टर जिल्ला आईन सहायता केन्द्र रे जोगाजोग करंतु समय बंचांतु खर्च कमांतु संपर्क रक्षा करंतु मध्यस्थता को रक्षा करंतु एवं आगो को नियंतु।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो मोपशान।
1: नमस्कार। आ गया बरगड़ रु कहुतली,
0: आज्ञा।
1: गोलक बिहारी प्रधान कहुतली।
0: भल अछंती?
1: आज्ञा,
0: को को कार्यक्रम सुनुछंती?
1: मुख्य कार्यक्रम होचे रेडियो के पचारु, आउ आमर डायल आकाशवाणी,
0: आज्ञा।
1: तापरे आमर देशिया भाषा रे जो गुटे गीत अछि ना, चैती जन, चैती जन रे।
0: सरदा लगबा गीत।
1: आज्ञा आज्ञा।
0: आ कोन करुछंती?
1: मु अछि गुटे प्राइवेट कंपनी रे अकाउंटेंट अछि।
0: अच्छा, कौन गीत सुनिबे कोंतो?
1: प्यार का साया रो, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे।
0: ठीक अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
1: ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो मो पर्सन, आकाशवाणी जयपुर।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन तो?
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार,
1: राजू अग्रवाल
0: जी। राजू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: देवास मध्य प्रदेश।
0: आप क्या कर रहे हैं?
1: ये बैठा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर।
0: ठीक है, आप रेडियो सुनते हैं? आकाशवाणी जयपुर सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सुनते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए।
0: जी जी जी, आजकल वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम दीदी गर्म है अभी।
0: जी जी जी, आपका पसंदीदा गाना बोल दीजिए।
1: गीत है शैलेंद्र सिंह, होगा तेरा प्यारा।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत

0: हेलो
1: हेलो
0: दीदी नमस्ते
1: नमस्ते
0: नाम है छत्तीसगढ़ से माखन मोरम बोल रहा हूँ दीदी जी।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सब ठीक है दीदी जी। क्या है कि खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं निंदाई का।
1: अभी आप खेत में हैं?
0: जी दीदी जी।
1: क्या काम चल रहा है भैया?
0: अभी खेती बाड़ी काम चल रहा है दीदी जी निंदाई का।
1: बारिश वहाँ पे इस साल अच्छा हुआ है?
0: बारिश तो अभी नहीं हो रहा है दीदी, एक दो हफ्ते पहले हुआ है।
1: बोल दीजिए आपका पसंदीदा गाना।
0: आज सुनना है दीदी अपनापन फिल्म का, सुनवा दीजिए दीदी आदमी मुसाफिर है।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी हमारे फोन कॉल शामिल करने के लिए।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला ब्रिज, मध्य प्रदेश।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बस बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
1: जी हम तो बढ़िया हैं। घर में सब लोग अच्छे हैं?
0: जी हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं।
1: अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई?
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: ठीक है, अभी आप कहाँ पे हैं, घर में या खेत में है?
0: अभी घर पर हूँ।
1: ठीक है, आप कौन सा गाना सुनेंगे बोलिए।
0: जी मौसम कैसा है आपके इधर?
1: बहुत अच्छा है मौसम
0: जी, अब तो हल्की फुल्की ठंड भी पड़ रही है अब तो।
1: हाँ थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है
0: जी।
1: बोलिए आपका पसंदीदा गाना।
0: फिल्म का नाम है कैसे कैसे रिश्ते, गाने की बोल है फूलों से ज्यादा हंसी है।
1: ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ मैम नमस्कार, जय जगन्नाथ।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ। कौन तू?
0: तू प्रफुल्ल प्रधान कैसे कॉल पर माने हूँ?
1: आके आके प्रफुल्ल भाई भला चंदी।
0: हाँ बहुत
1: लुगा बिन आरंभ कर दिले।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
1: जी लोकेंद्र भाई, कैसे हैं आप?
0: बस मैडम जी अच्छे रहते हैं, मस्त रहते हैं। आपका प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है मैडम।
1: कुछ
0: करीब 4 सालों से सुन रहा हूँ आपका, 4 या 5 साल हो गए होंगे मुझे, प्रसार भारती ऐप आया है जब से।
1: जी
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, और आपसे मेरी शायद दूसरी बार बात हो रही है, पहले एक बार बहुत दिन पहले बात हो चुकी है।
1: जी। हाँ। और घर में सब कुशल मंगल है?
0: हाँ मैडम, सब कुशल मंगल में है। माता जी है, साथ में है, बच्चे, लड़का है, लड़की है, बहू है, सब परिवार सब कुछ।

0: कुशल मंगल में है बिल्कुल
1: जी। आप क्या काम करते हैं भाई साहब?
0: मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मैडम मेरा।
1: अभी सैलून में है आप या घर में है?
0: नहीं अभी घर पर हूँ, अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो श्राद्ध पक्ष में अपन अपने परिवार के पूर्वज रहते हैं उनकी धूप ध्यान कर कर ही दुकान जाते हैं।
1: पितृपक्ष चल रहा है?
0: हाँ वो पितृपक्ष बोलते हैं उसको। हाँ तो धूप ध्यान करके अभी दुकान जा रहा हूँ मैं, तो अभी आप गए यहाँ फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, फोन लग गया मेरा।
1: बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आपका पसंदीदा गाना बोल दीजिए।
0: ये फिल्म का नाम है संतान।
1: संतान ठीक है।
0: एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में है गाना, और गाना है दिलों में दुआएं आंखों में पानी। हाँ ये गाना है ना, दिलों में दुआएं आंखों में पानी, ऐसा गीत है मतलब।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते बहन जी, मैं सुनील झा बोल रहा हूँ भोपाल से।
1: ठीक है भाई साहब, कैसे हैं
0: बस बढ़िया है जी।
1: आप? अच्छा, बोलिए, आप क्या काम करते हैं?
0: बहन जी मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलरिंग का।
1: अभी आप कहाँ पे हैं, घर में या आपकी दुकान पे है?
0: नहीं घर में ही है, घर में।
1: जी, दुकान नहीं गए अभी तक?
0: नहीं घर पे ही करते हैं, यहाँ घर पे ही अपना दुकानों से सेटिंग है काम की, वो कुछ अपने ग्राहक भी आ जाते हैं
1: अच्छा,
0: तो घर
1: बढ़िया।
0: पे ही करते हैं काम, और आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं न्यूज़ या पे।
1: अच्छा, रेडियो तो एक ऐसा ही माध्यम है, आप काम करते करते भी सुन सकते हैं।
0: जी, और हमारे काम में तो और अच्छा रहता है कि हमें जो कि गाना बजते हैं तो अपने काम में भी मन लगता है, और काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, काफी
1: जी
0: प्रयासों के बाद। जी,
1: जी
0: उधर का मौसम कैसा है? और
1: अच्छा है मौसम अभी?
0: जी, तो
1: आपका वहाँ मौसम कैसा है भैया?
0: यहाँ तो अभी उमस बड़ी गर्मी है थोड़ी, क्यों धूप निकल रही है बहुत तेज।
1: ठीक है, बोल दीजिए भाई साहब आपका पसंदीदा गाना।
0: जी, आज अभी हमारे यहाँ जो स्क्रैच के अभी चल रहे हैं तो पुरखों को जो भी याद किया जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कवि
1: जी
0: से कि जो कि है अपना मरने के बाद भी किसने देखा, जो भी है कि माँ बाप सेवा जिंदा में ही कर लो।
1: जी
0: और क्या है कि अपने बुजुर्ग को जो भाई कम से कम जितना भी टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम प्यार से उनसे शाम के टाइम थोड़ा बात करें, और
1: जी
0: उनसे जो भी इच्छा है उनकी पूरी हो, जो क्या बुजुर्गों का अच्छा का तुम थोड़ा प्यार से बात करोगे तो भी वो खुश हो जाते हैं,
1: जी
0: तो उनको खुश रहेंगे तो अपने भी खुश रहेंगे। तो
1: हाँ
0: इसी पे हमारा गाना है, माँ बाप फिल्म का है, ले लो दुआएं माँ बाप की।
1: बात के ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी, कुछ मित्रों के नाम ले सकते हैं? जी
1: जी, जरूर लीजिए।
0: जी पहले तो आपको रहेगा और आकाशवाणी हमारी जयपुर उड़ीसा को
1: जी
0: और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को, तो हमारे कुछ हेलो फरमा से एकता रेडियो ग्रुप से हैं, लोकेन वर्मा जी हैं, तुकाराम जादव जी हैं, गौतम रायवोली जी हैं, और सत्येंद्र कुमार चंदौलिया जी हैं, गंगाधर सावनकर जी हैं, तुकाराम जादव जी हैं, और हमारे दिलीप आहूजा जी हैं, और राहुल पाल जी हैं, और राजू यादव जी हैं, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को रहेगा डेली के।
1: जी बहुत बढ़िया।
0: जी, धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: हेलो, जय श्री माता।
1: शिवा लोहा से एमपी विदिशा से बात करता हूँ, आपका निमित तो सा। कैसे हैं आप?
2: हम तो बढ़िया हैं भाई साहब, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं मैम।
2: घर में सब कैसे हैं भाई साहब?
1: जी, सभी लोग कुशल मंगल से हैं मैम। और आपसे पहली बार बात हो रही है शायद मेरी।
2: जी जी जी
1: जी मैम, आपका शुभ नाम जान सकते हैं?
2: हाँ, लीना नंदा। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब?
1: मैम, मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ
2: जी।
1: मोबाइल एप्लीकेशन से आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ
2: जी,
1: और छोटी मोटी समाज सेवाएं करता रहता हूँ मैम।
2: बहुत बढ़िया, आपको समाज सेवा करने से अच्छा लग रहा होगा।
1: जी मैम, जैसे कि रक्तदान करना हो गया हर 3 महीने में
2: जी,
1: और गाय को चारा देना, पक्षियों को दाना देना, गरीब लोगों को समय समय पर भोजन कराना
2: जी,
1: और पेड़ पौधे लगाना मैम।
2: बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज में।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: जी बोलिए, आपका पसंदीदा गाना?
1: मैम आज पसंदीदा मैं सुनना चाहता हूँ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का गाना, टाइटल सॉन्ग मैम। और ये मैं कप्तान स्मिथ जी को, जिन्होंने इतनी बहादुरी का और हम भारतीयों का सिर और सीना चौड़ा किया है, जिस तरह इतने लोगों की जान बचा के,
2: हाँ।
1: मैं उनके माँ बाप के चरणों में नमन करता हूँ और उनको ग्रैंड सलूट करता हूँ मैम। ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा मैम।
2: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।

0: हेलो अपा नमस्कार कुमारी दीक्षा गोपाल ग्राम सिनापड़ा पोस्ट पर्ला थाना धर्मगढ़ जिला कलाहांडी रु कहुतिली आपण माने केमिति अछंती
1: बहुत बढ़िया घरे सब केमिति अछंती
0: घरे हमर समस्त खुशी रहंती अपा
1: वर्षा होउची की
0: नाही अपा खरा होउची
1: कोन काम करथले एबे
0: वर्तमान एबे रेडियो स्टेशन लगाउथिली अपा आउ हमर घर रो हाल चाल तो सब मन अपा हमर घरे एबे जुका अपन के जोजना करछंती अपा हमर घरे
1: गीत गाँति गोटे गीत गाय शुणी दिं बहुत बढ़िया आपण आकाशवाणी जयपुर शुणुंट सबुबले बहुत बहुत धन्यवाद कहतु आपण पसंद र गीत
0: मो पसंद रखता दिन भाले रो दे देबे अपा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे
1: ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो लीना अपा नमस्कार
1: नमस्कार
0: मु बरगड़ रु स्वर्ण प्रभाकर कहूची
1: जानिले भलो अछंती
0: हां मु भलो अछि मु जानिले आज आपण अछंती मते से भाई कहला गंगा बड़ पंडा मते कहला से आउ आज लीना नानी अछंती।

0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: मैं राजीव यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
1: कैसे हैं भाई
0: साहब? बहुत दिनों जी बहन, बहुत दिनों बाद कॉल शामिल हो रही है
1: जी।
0: बहुत कॉल प्रयास करते हैं, कॉल लगती ही नहीं है।
1: आप प्रयास करते हैं ना?
0: अरे बहुत प्रयास करते हैं बहन, हर शनिवार को करते हैं लेकिन कॉल ही नहीं लगती।
1: लगेगा आज जैसे लगा है ना, एक ना एक दिन जरूर लगेगा। आप हर
0: आज लग गए तो बहुत खुशी है बहन।
1: और घर में सब कैसे हैं?
0: घर में मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगलमय है बहन।
1: आप क्या काम क्या करते हैं भैया?
0: कृषि का काम करते हैं और आपकी थाली सजाने का कार्य करते हैं।
1: मौसम कैसा है वहाँ का?
0: मौसम तो बहन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप खिली हुई है।
1: खेती बाड़ी में आप क्या क्या अभी फसल उगा रहे हैं?
0: कल इस समय बहन तिली की कटाई हो चुकी है और मूंगफली ये दो तीन दिन में निकलने लगेगी खेत से।
1: बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा गाना?
0: गाना तो बहन क्रांति मूवी का, मेरे हाथों पे नौ नौ चूड़ियां जरा ये वाला गीत। इजाजत हो तो दो लाइन कह दी थी बहन।
1: बोल दीजिए।
0: हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं
1: जी,
0: सपनों की दौलत हम आप पर लौटाते हैं
1: जी।
0: ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर बहना जी आपके आने पर पलकें बिछाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: सुरक्षा कांगड़ी जिले कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्ते, कैसे हैं आप भाई साहब?
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, जीत लेते हूँ मैडम। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ आकाशवाणी जयपुर में, उनसे मिलकर जिंदगी को यही लगा। जरूर सुनाएंगे मैडम, जरूर इंतजार करूंगा, जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनाएंगे भाई
0: जी। मैडम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
1: एत बड़ पर्यंत आपण मैंने शुणुले फोन इन प्लीज कार्यक्रम हेलो मो पसान। आपणक सह थी मु लीनानंद। आपणक सह कथा लगे मनपसंदर मीठा मीठा मनछुआ हिंदी चलचित्र गीत शुणवा लगे। एवं समय तो इशारा देवाकू हेब, ता पूर्वर प्रतिश्रुति रहिला पुणि थरे फेरिबो आसंता रविवार ठीक एई समय रे। विदाय नेबा पूर्वर कहि रखुछु हिंदी चलचित्र गीत शुणवा लगे आमको आगुआ फोन करंतु प्रति शनिवार सकाळ 10:30 समय रे। एवं कार्यक्रम हेलो मो पसंद शुणंतु प्रति रविवार सकाळ 9:00 पर्यंत। आमको कॉल करिबा लागि नंबर हैला 06854230690। तेबे रहुछु, नमस्कार।

0: ଶୁଣିଲେ ହାଲମ ଉପସନ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଲୀନା ନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:05 ଦିନ 12 ଏବଂ ଦିନ 2:15। ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଦିନ 11 ରହିଛି ଆକାଶବାଣୀ ଲାଇଭ। ଓଡ଼ିଆରେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଦିନ 12:30। ଦିନ 1:10 ଶୁଣିବେ ଘର ଓ ଘରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୁଣିଲେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटने को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैखों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ବାଦଶାହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ। ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ଅଭିଜିତ ଏବଂ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ। ସମୀରଙ୍କ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ।

चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे मौजूद रहिछि राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार मौजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रो आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मशीन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नाही सार कलाबजारी को रोकंतु मा माटी रा सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करबा पई भूलंतु नाही कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार।

चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे मौजूद रहिछि राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार मौजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मशीन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नाही सार कलाबजारी को रोकंतु मा माटी रा सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करबा पई भूलंतु नाही कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास

स्पष्ट रूपरे बुझाइ देले रूपांतरित शरीर प्राणमनरे भगवत प्राप्ति बा दिव्य मानवर दिव्य जीवन लाभ एई जो लक्ष्य टिकी सिद्ध करिवारे माही साधिका माही साधना माही सिद्धि एकथा श्री अरविंद कहिले से मां को नारी रूपरे आणिकि आम पाखरे थोई देले एवं कहिले जे ये होचंती परम ब्रह्मंकर चैतन्यमयी शक्ति सचिदानंदमयी शक्ति चेतना ओ आनंद शक्ति ये होचंती अदिति दिव्य जननी जिए कि मानुषी मा रूपरे मानुषी तन धारण करी जन्म मृत्युर तोरण को पार देकि चली आसी आम पाखकु मनीष पाखकु पृथ्वी पाखकु पृथ्वी को तार अहंकार तार अज्ञानता तार सकल समस्या रु मुक्त करिबा तेणु ये जेते समस्या वर्तमान देखा जाइछि ए समस्यार समाधान केवल माँ का हाथ रे मनीष जाति की माँ ही एथिरु मुक्ति देबे किंतु एथि पानी माँ केते गुड़े कथा आम मान को कहिछन से कथा गुड़ी कहछि मनीष जेते दिन पर्यंत तार पुरुणा जीवन प्रति मोह रखिथिब अतीत कु जबरदस्ती बांधी रखिबा निज भितरे अतीत कु छाड़िबा कु न चाहिब सेते दिन पर्यंत समस्यार विभिन्न समस्यार संघात ताकु सज्य करिबा को पड़िथिब कारण आपण माने जानिछंती जे नूतन युग नूतन जीवन नूतन एक अतिमानव जाति नूतन एक दिव्य पृथ्वी सुख जगत रे निर्माण हे सारिना एवं भगवान कर एवं मानव आत्मार विश्व आत्मार जो विच्छिन्नता मझिरे थिला से विच्छिन्नता पूर्ण होइकिरी एव एक दिव्य सूर्यालोकित पथ तयारी सरिलाणी मा जदिन 1956 मसिया रे अतिमानस शक्ति के जो माँ देखिले आपण माने समझ जानचंती जे माँ प्ले ग्राउंड रे ध्यानस्थ थिले देखिले जे निजे से एक विराट सुवर्ण रो शरीर धारण करी खूब विराट हो जाउचंती एक सुवर्ण द्वार निकट रे उपस्थित हेचंती जो सुवर्ण द्वार पृथ्वी के एवं भगवान को अलगा करी रखिछ जो द्वार अतिमानस एवं अधिमानस मन इत्यादि की अलगा करि रखिछ मा सुनिले इंग्रजी रे जे टाइम हैज कम एक सुवर्ण हातुड़ी धरिकिरी गोटिए पहाड़ रे से द्वार टिकी भांगी देले अतिमानस शक्ति झरझर झरझर होइकिरी पृथ्वी रे प्रवाहित होला मा पिला मानो कहिचंती मु भावुथिली जे पृथ्वी कुआडे अतिमानस स्रोत रे भासी जीवणी बा भांगी चुरचुर होइ जीवणी किंतु जेतेबेले मुँ आखि खोलिली देखिली जे पिला माने ध्यानस्थ अछंती बा पृथ्वी एक दिव्य पृथ्वी हेइ जीवणी एवं किछि बाहारे किछि बदली नाही सेतेबेले मुँ जानिली ए कथाटी सूक्ष्म जगत रे हेइ सारिलाणी किंतु स्थूल जगत रे हबा पाही मनीषर किछि प्रस्तुति मनीषर किछि आंतरिकता मनीषर किछि निष्ठा मनीषर किछि समर्पण अपेक्षा रखी साधना कथा मुँ कहूनी जे साधना मा करूछन किंतु केते दिन सेटा लागिब मां को जेतले प्रश्न होला पृथ्वी दिव्य पृथ्वी बाबा को मनीष दिव्य मानव बाबा को केते समय लागिब मां कहिले मनीष जदि प्रकृत आंतरिक हुए प्रकृत निष्ठापर हुए प्रकृत एक दिव्य नूतन जीवन चाहे नूतन पृथ्वी चाहे पुराणा को छाड़िबा को चाहे ताहले या खूब त्वरान्वित भाव हब खूब शीघ्र हब कारण सामूहिक भाव रे मनीषर चैतसत्ता बा मनीषर अंतरात्मा जे विश्वर अंतरात्मा से प्रस्तुत हे सल्लानी कोटरे डिग्री हे सल्लानी किंतु दुई दल दखल आरो जहार नुने संपत्तिटा से ए पर्यंत दखल करथिला दखल छाडिनि सेई भली ए पर्यंत ए पृथ्वी इगोर अधीन रे थिला ए पर्यंत ए पृथ्वी अज्ञानतार पृथ्वी हेकि रहिछ तेणु एबे सुधा इगो दखल छाड़ मनीषर अंतरात्मा कौन चाहूछि मनीषर अंतरात्मा चाहूछि दिव्य स्वाधीनता दिव्य शांति दिव्य शक्ति दिव्य आलोक दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद ए छटा जीव अमरत्व ए छ सत्ता जिनस

0: सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
1: आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी रो। पश्चिमबंगर नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपनिर्वाचन पर प्रचार कार्य आज शेष होउछि। आसंता मंगलवार दिन सेठारे भोट ग्रहण करा। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी बीजेपी प्रार्थी सपक्ष में आज नंदीग्राम केतक प्रचार कार्यक्रम में जोगदेवे। रेजीनगर में मध्य प्रमुख राजनैतिक दलगुड़ी पक्ष प्रचार कार्य को जोरदार कर शांति श्रृंखलार सह निर्वाचन परिचालना को दृष्टि रखि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर नक्सल मुक्त भारत गठन दिगरे सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करि आसिछन्ति। ए दिगरे मिलिथिबा सफलता सरकारक प्रयास को प्रतिपादन करिछि। आजि आसन्तु सुनिबा ए संपर्करे।
2: 1966 मसीहारे पश्चिमबंगर नक्सलवाड़ी आरंभ होइथिबा नक्सल आंदोलन प्राय पांच दशंधि धरी देशर मध्यभागरे राज्यर प्रशासनिक पदक्षेप को आह्वान दे आसुथिला। एही अंचलकु रेड करिडर बोली कहाजाउथिला। 2010 मसीहा एप्रिल रे छत्तीसगढ़र दंतेवाड़ा माओवादी माने सीआरपीएफ एक पेट्रोलिंग दल उपर आक्रमण कर 76 जन जवान को हत्या करिथिले। 2014 सुधा देशर 126 जिल्ला नक्सल प्रभावित अंचल तालिकारे रहिथिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार समय नक्सलवाद मुकाबला पर सुरक्षा अभियान और गुईंदा कार्य को सड़क विद्यालय मोबाइल टावर और बैंक ऋण विकासमूलक पदक्षेप जोड़ा जाइथिला। फल नक्सल प्रभावित अंचल सरकारी व्यवस्था और विकास पहुंचपारिथिला। माओवादी आत्मसमर्पण संख्या मध्य वृद्धि पाई वर्षक यह संख्या 421 वृद्धि पाई 6558 पहुंचा। गत मार्च 30 तारीख से स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह देशर आउ कौन जिला नक्सल प्रभावित हो रही संसद दीर्घदिन धरी देशर मध्यभागरे रहिथिबा रेड करिडर अदृश्य प्रतिबंधक एबे भांगी जाइछि। ए संपर्क रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन्ति,
0: आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
2: आकाशवाणी संवाद विभाग मलय रंजन मिश्र।
1: येमेन सेना आक्रमण में हुती विद्रोही गोष्ठी बहु परिमाण में क्षति सही येमेन पक्ष अन्पक्ष रियादे को क्षेपणास्त्र और ड्रोन आक्रमण करुती विद्रोही गोष्ठी दावी को साउदी आरब खंडन कर गणमाध्यम सूत्र मिलता सूचना अनुजाई आंतर्जातिक स्तर में स्वीकृतिप्राप्त येमेन सरकार सशस्त्र बाहन तोर अल्वा एवं ताइज अंचल द्रुति विद्रोही गोष्ठी उपरे प्रबल आक्रमण कर फलरे पाखापाखि 260 हुती विद्रोही मृत्यु होइतिबा कुहाजाइछि। विद्रोही गोष्ठी 44 सामरिक जान और परिवहन एवं जोगाण क्षेत्र में व्यापक क्षति होइतिबा येमेन सेना दावी करिछि। जापान ने चलिथिबा एशिय क्रीडा प्रतियोगिता 2026 आज उद्यापित होउछि। दुई सप्ताहरु अधिक समय धरी 43 वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिता अनुष्ठित होइछि। एशिय क्रीडार एही विंशतम संस्करण उद्यापनी समारोह जापान नागोयास्थित पालोमा मिजुहु स्टेडियम ठारे अनुष्ठित हेबो। भारतीय समय अपराह्न 2:00 रे समारोह आरंभ हेबो। उद्यापनी समारोह रे विभिन्न कार्यक्रम सह खेलाड़ी परेड एशिय क्रीडा पताका अवतरण अनुष्ठित हेबो। 2030 संस्करण कतार दोहाठारे अनुष्ठित होबो। चलित संस्करण एशिया क्रीड़ा पताका दोहा को आज हस्तांतर करा जिबो। बंधुक चालना खेलाड़ी नीरु ढांडा भारतीय खेलाड़ी परेड रे जातीय पताका बहन करिवे। चलित संस्करण रे मोट 85 पदक सह भारत तालिकार चतुर्थ स्थान रे रहिछि। सेथिमध्यरे 21 स्वर्ण 27 रौप्य एवं 37 कांस्य पदक अंतर्भुक्त। मुख्य संवाद पुणि थरे। एमएसएमई स्टार्टअप और देशर विभिन्न प्रतिष्ठानर सफलता आधार रे विकसित भारत यात्रा गतिशील होईछि कहिले उपराष्ट्रपति। देशरे आईटीआई शिक्षा प्रतिष्ठान को उन्नत करिबा नै कार्यकारी हेउथिबा पीएम सेतु योजना पूर्ण करिछि एक वर्ष। पश्चिमबंगर नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपनिर्वाचन पई आज शेष हेब प्रचार। आसंता मंगलवार मतग्रहण एवं आज उद्यापित होउछि जापान ने चलिथिबा एशिय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 85 पदक सह तालिकार चतुर्थ स्थान रे भारत। संवाद शेष हेला।

आकाशदीप फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम सुन का गीत। लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुल गया। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

श्री रामचंद्र की तर्ज साय लुधियानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था। सदाबहार नगमे ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।

0: अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मन चाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चले हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मन चाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अंबाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की यह फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

महबूब तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ौरा करेली बाग के हमारे श्रोता हर्ष राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी, और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारी बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का, और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और मोखीलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हजरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसर जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश थी ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्म रौमा, दिलावर हुसैन ट्रोमा, अजरुद्दीन तमामुद्दीन ट्रोमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद के हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चिंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल जहानवी का लिखा, जवी का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचनगांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली की हमारे श्रोता है रणधीर गुप्ता, बबिता सल, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं। इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुज जी और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यही संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन।

0: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
1: अनाम भैया, वो अनिल सुनाओ ना।
0: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: ना भैया?
1: पूछो।
0: वो वायलिन तो कहां से लाए?
1: ये वायलिन, ये वायलिन।
2: बेटे अनाव, कहां जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लंग तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बटलर से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बटलर कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
2: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
3: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
4: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
2: अनाम, मिस्टर बटलर ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
2: जानते हैं, जानते हैं,

0: मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है।
1: माँ, माँ
0: आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: अब मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो नाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पच्चा बहुत अच्छे आदमी है।
1: होंगे मगर
0: अनाम।
1: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा, तुम चाहोगे तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अना, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेही भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती, वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
0: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है, बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो देगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है, बस बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश रहे ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू, प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो यह है कि कार के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब होश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश
1: करूंगी। अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर

0: तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो ये अच्छा नहीं लगता।
1: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
0: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम का मतलब होगा संसार को खो देना।
2: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे से मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
1: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूं, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपने नापसंद की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप बताइए।
2: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और, जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं है,
1: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
0: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं।
2: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
3: उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल नाटक कर,
2: कर
3: नाटक कर,
2: अच्छा अभिनय
3: कर, चल तू उत्सव हो, हंस खुलकर हंस, बाजा बजा वायलिन बजा,
2: बस बंद कर
3: अब बंद कर, चल कहना मान आज्ञा मत डाल, खुश रह मासूम मत रह, खुलकर लो खुलकर लो खुलकर जाओ।
1: इस तरह नहीं गा सकते, मुझे बच्चा बहुत उछलाती है, मुझे बच्चा बहुत उछलाती है, मुझे बच्चा बहुत उछलाती है। नहीं अकेले ही जाना चाहिए, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा, मैं तेरे लिए बॉल मंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
4: अनाम
1: के लिए बॉल मंगा।
4: अनाम अनाम, क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपने डरो मत बेटा, डरो मत।
0: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया
0: हम्म,
1: आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं रितु मेरी मम्मी कहाँ गई। तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ। अनाम अनाम अनाम
0: हाँ?
1: ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
1: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
1: इतनी ठंडी सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ, तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी है?
1: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
1: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
2: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन है, घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
3: अनाम दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
3: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूं कहां गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
3: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो मां।
3: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
3: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
3: कहां जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
3: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
3: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों मां? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं, आखिर क्यों? ये सुनोपन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है।

0: और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वही लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
2: जी हां, बलि ना होने दें। यह फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़कर चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था

0: और अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है।
1: बहुत दिन हो गए नाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इसे झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं।
0: पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गईं पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर के बदलाव के रंग से दिन।
4: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन मुझे अंदर मुझे आवाज देता है।
4: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे।
0: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
0: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
3: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
5: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
0: कहां है उत्तर?
5: कहां है उत्तर?
3: कहां है उत्तर?
0: कहां है उत्तर?
5: कहां है उत्तर?
6: अनाम भैया।
3: हाँ रितु।
6: वायलिन सुनाओ ना।
3: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
6: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: तालियां बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान है और वो भी उसी के साथ है।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है।

0: किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और रितु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
1: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

वायलिन वादक। नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
2: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
2: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
2: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
2: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहां कहा था, उन्होंने वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
2: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
2: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
2: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था जी। ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
2: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
2: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
2: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
2: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। और अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को मां कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
0: ओहो हो,
2: तो ये तपस्या होती है
0: जी
2: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझे कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
2: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
2: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
2: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
2: परमेश्वर, तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई, और 1964 में पहला सोलो बजाया मौसा साहब के लिए
0: जी। जी,
2: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
2: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती
2: है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई, और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू
0: जी,
2: कव्वाल जो थे उन्होंने दी
0: जी।
2: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहां पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है,

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा।
4: मैं निकला

0: तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में, तमाम प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह।
0: और 17,000 रुपए का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी।
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टर है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टर,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई, लेकिन उजाली उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार, जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत जंगल जयशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
1: जी।
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे। तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आरडी बर्मन क्या, एसडी बर्मन साहब क्या
1: जी,
0: बहुत सारे उस टाइम पे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले। तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसकी नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो में
0: जी,
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
1: जी।
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन?
1: अरेंजर,
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी, सोनिक ओमी, हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं,

0: जी,
1: वो ब्लाइंड थे
0: जी,
1: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
0: वाह।
1: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वहां लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
0: जी,
1: क्योंकि मदन साहब के पास प्यानो था।
0: हाँ।
1: तो मास्टर जी वांटेड ए प्यानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, उन्होंने बताया पूरा सीन। डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
0: गजब।
1: एक जगह ऐसी थी जहां तो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी कर के आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
0: ये मेमोरी, सोनी जी
1: मेमोरी, ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी. हाँ, मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया.

0: है बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ. सुनो एक दफा, सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है. अच्छा देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पर. ओके टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया? प्रशांत साहब ने. ये मैं किया मदन साहब ने. ये संगीत डायरेक्शन ही सुन. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है, वो म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता. अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो एंड सो, वो अलग बात है. अच्छा मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया.
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया. मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, या फ्लूट या सरोद या जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तक फाइनल तक मैं वहां पे हूं. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाय मी. म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर.
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, या शाम होने आई में
0: जी, जी.
1: हॉर्न की आवाज आती है.

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसको भी डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है। बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: मौका मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहां कहां है,
0: कहां कहां है
1: जी,
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई

0: है वो सुरेंद्र।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत देसाई के साथ
1: जी।
0: फिर पाटी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, वासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी। जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह,
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी नारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन
0: से भी उन्होंने काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनके साथ मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी। जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात को जैसे थे फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बंबई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मेरे को क्या हुआ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुना, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहिए। और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान
0: भी रहे। देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है
1: जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
0: ये कॉपी
1: लिए परेशान।
0: किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। लेकिन ये इंसिडेंट था,
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो अरिजन के बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: हाँ लेकिन हो नहीं सका
1: जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत।

0: अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी
1: डैडी, मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली, हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे कहा तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना
1: गजब,
0: तो मुझे रोका। मैं कहा अन्ना आप कहा, मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहा बाइक में जा रहे। मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो तुम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी जी,
0: आशीर्वाद काबिल होना पड़ता है, लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटी है।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामत ही बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन के साथ शुरू किया।

0: तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
1: हाँ
0: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मनोज जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
1: मनोहरी दादा
0: की फ्लूट हो गए,
1: सेक्सोफोन
0: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
1: मारुति बजाते थे।
0: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन, पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
1: जी,
0: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और 9 रत्न कौन थे
1: जी?
0: मनोहरी जी
1: 1,
0: वासु जी
1: 2,
0: के भूपी जी
1: 3,
0: उसके बाद भानु
1: हाँ
0: 4, मारुति
1: 5,
0: देवीचंद
1: 6,
0: अमृत
1: 7,
0: होमी मुल्ला
1: 8,
0: और एक चंद्रकांत
1: 9। गजब गजब।
0: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
1: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
0: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
1: हाँ,
0: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
1: गजब गजब।
0: हाँ, चंद्रकांत हो गया,
1: पूरी टोली का
0: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
1: जी
0: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: खाना खाते हैं।
1: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
1: क्या बात है?
0: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं
1: जी।
0: तो सुन लीजिए आप
1: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहे आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था ना, केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से कहीं वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहां रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हो तो मैं खड़ा हो गया। पंचम जी, मैं पिछले छह महीने से सुन रहा हूं केबीएन केबीएन केबीएन, आशा जी की गलती हुई थी केबीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केबीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती करी, आप इतना शॉर्ट कर

0: व्हाट इज दिस?
1: अरे उत्तम, आई एम सॉरी।
0: उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
2: क्या बात है,
0: ये लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम।
2: वाह।
0: फिर मैंने कहा केबीएन। सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े। वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
2: जी जी जी।
0: तो ये सोलोस जो है वो तो है। अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
2: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
2: हाँ।
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
2: जलपरी वाला
0: वायलिन सोलो का पीस था।
2: अच्छा,
0: सागर फिल्म।
2: जी।
0: तो जो वो कमला सिंह बजाता है।
2: अच्छा अच्छा, वो। जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
2: हाँ।
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
2: जी जी जी।
0: मैं बड़ा परेशान हो गया। पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये जो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
2: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते।
2: जी।
0: मैं भी मारो टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
2: हाँ।
0: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
2: जी जी।
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी, आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर। तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, तुम ये यहां से बजाओ, कि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा। मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
2: स्नैप आ जाए,
0: हाथ से करना।
2: जी।
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है।
2: जी।
0: अभी ए,
2: हाँ।
0: ये साउंड है।
2: जी।
0: ये चाहिए, तार टूट गई।
2: हाँ हाँ।
0: तो ये दो तीन डेसल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की। तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
2: हाँ हाँ।
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
2: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं, वो वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है, तो मैं वेट कर रहा था पंचम की, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैंने पूछा था कि कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं न्यूट्रल बना तब मुझे समझ में आया कि वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: मुझे याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
1: हाँ जी वादा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धान के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी

0: शिवम जी
1: नहीं बे
0: नहीं जुआ करते सर तू
1: अली रेडियो सुनो भाई बिन मन के मुई शुरू वाली जुआ कॉलोनी भाई बिन मन डार्क डायलेक्ट जुआर कॉल
0: हां ले मुई से जुआ कर देली जे तू शुरू वाली बोल ना करे मुई देखी नहीं तोर मुंह बाटे बन जी बोलते
1: ओए
0: ऐसी बोल नहीं की कौन डाले में जाए बन जी बोले की
1: जो डाली से तो भाई मामा मुई बन जी से
0: सिया आई जा बोल लगे से गुड गया मातर आज ही तो हमरो खाता वाता जोर नले बोल जे मत कथा वार्ता लगसी
1: के

0: ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଶିଆ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୈତି ଜହ୍ନ, ଏଥିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ କେ ପାଚାରୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:05। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ ୱେଭ୍ରେ 204.5 ତଥା 1467 କିଲୋ ହର୍ ଯୋଗେ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ର 103.6 ମେଗା ହର୍ ଯୋଗେ। ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging।
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक

0: शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इतिबेला जाए कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर प्रचार करुछु देशिया भाषार कार्यक्रम चैती जह्न। आज एथिरे आपण शुणुछन्ति रेडियो के पचारु। यार द्वितीय भाग पई आमे आपणकु नै जाउछु सीधा प्रसारण सकासे आमर टॉक स्टूडियो को।
2: जन जन मांझे मांझी मन भाई मन मन आछ सेमन जन फोन लगाई दके मन खोला आछ सेमन फोन कोन खोरलेनी एले गोटे फोन आसिरला खोटी गला आरे लोक मन लगाइबे लगाओ छेंते लगाओ काम ठाकुर पै आछु खाता बरता हेउ आरे सेमन सब खाता बरता गिरी हम बहुत छु मिले खाता करबे। हेलो रेडियो को बचारु। हेलो रेडियो को बचारु।
3: हेलो
2: हां के कोइला छने बाबू कोन देनी कोइला छने जोर लागो
3: एदो बाबू जोर बाबू हां ओकेलो मोबाइल आछ काय
2: ওই তোমার নাও কোলা অলপুয়া গাঁও অলপুয়া
3: মানসিং পর্দা বাবু
2: কোন গাঁও নে
3: বাণাগুড়া
2: হলে তোমার কাই পর্সন আছে আছে বাবু আমার বাবু বসলা আছে এতে কথা বার্তা ইতিহাস
3: এতে কাল আছে বলে আমার গাঁ গোটে আমার গাঁ তো পাড় উপরে আছে তুই জানলো সেটি আমার বয়স পয়স তো আর দেখবাটা নাই কাইটা নাই পিলা টোকি বিবাহ করলু টোকি পেট্রি হেলা তাকে নেলু মেডিকেল সে আশা দিদি নেলা হাইতানু পুলিশ আইলে তাকে বাঁধি নিয়ে গেলে টোকি বলি কিরি পিলা এবে জেলে আছে কেমতি করবার হলে টোকির তু বয়স হল আর নাই বললে ডাক্তার তো পটাই দিল তা নাই থানাই পটাই দিল জেল
4: ঝিও নিশ্চিত নাবালিকা থিব এবং এমানে জানি নথিবে যেহেতু যেমানকৰ পাবলিক এৱাৰনেছ নাই জানি পাৰ নাহান্তি সেমানে যেমানে বাল্য বিবাহ কথা যে আগৰু জনে বন্ধু পচাৰুথিলে এটা সে বাল্য বিবাহ ভলিয়া হৈথিব এবং ডাক্তৰ নিশ্চয় তাৰ ডেট এজ ডিটৰমিনেশ্যন অফ এজ কৰিথিব কলা পৰে সে থানাকু যেহেতু জনাই থিব যেহেতু নাবালিকা তার কনসেন্ট কনসেন্ট নাই তেণু নিশ্চিত ভাবে পুলিশ বালা কেস করি তো ফরওয়ার্ড করিথিবে পরবর্তী পর্যায়ে
3: এন্তি বাবু সরকার না বুঝে কি এন্তি জেল পটাই দেলে অন্ডরা মাই কিনা গুমন স্কলগা করবাই কি
4: না বাল্য বিবাহ এটা গোটে অপরাধ বাল্য বিবাহ করিবাটা হি অপরাধ সেই উপরে সচেতন হবার আছে অন্য মানুষকে বি সচেতন করিবার আছে
3: আমাকে না

आकाशवाणी जयपुर वर्तमान समय संध्या 6:40 हवाकु जाउचे। आमर परवर्ती कार्यक्रम प्रथमे आंचलिक संवाद परे जनजीवन संवाद रिले करी प्रचार करुछु ए विज्ञापन परे।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नहीं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु। SBI सचेतन रहंतु, सुरक्षित रहंतु।
1: प्रचार करुछु आकाशवाणी रो कृषि शिक्षा।

0: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଚାନ୍ସେଲର ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଳାଧିପତିଙ୍କର ଏ ରିଭ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। 1435 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିଚିଂ 1435 ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅନରେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଏବଂ ଆମର ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ରେଗୁଲାର ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ମାନଙ୍କର। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଗୁଲାର ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଫାଙ୍କା ଥିବା 1435 ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 57,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ବେସିକ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସରିଲାଣି ଏବଂ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, ସଜେସନ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ November 1st ସବୁ ବେସିକ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସିଏ ରେଗୁଲାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଇପାରିବେ।
1: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 7ମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି
2: ଭାରତ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନକ୍ସା ମେ ଓଡ଼ିଶା କି ଏକ ଅଲଗ ସା ପହଚାନ ହେ। ଜବ ଭି ଓଡ଼ିଶା କି ବାତ ହୋତି ହେ ସବସେ ପହଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କି ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧଉଳୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ତଥା ବହୁତ ସାରେ ଐତିହାସିକ ସୁନ୍ଦର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କି ବାତ ହୋତି ହେ। ଆପ ସବ ଜାଣତେ ହେ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ ହେ। ୟେ ସବ ମନ୍ଦିର ସିର୍ଫ ଏକ ଆରାଧନା କି ସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ये है हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और सामर्थ्य का दर्शाता है। लेकिन हमारे पर्यटन की धरोहर सिर्फ ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है। हमारे पास 575 किलोमीटर लंबे बेहद खूबसूरत समुद्र तट है। कोस्ट लाइन गोपालपुर से लेकर पुरी के पवित्र तट तक हमारे बीच असीम शांति और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदान करते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सबने देश की बहुत सारी प्रख्यात सी बीच देखे होंगे, सभी का कुछ ना कुछ खास बात है, लेकिन पूरी बीच में जो आध्यात्मिक शांति मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। भीतर कनिका की मैनग्रोव फॉरेस्ट एक रामसर साइट और नेशनल पार्क है। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट देश की दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ प्रकृति और वाइल्ड वाटर लाइफ की एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लागून चिल्का झील है, चिल्का लेक है। साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आश्रय स्थल है और वहाँ दुर्लभ इरावारी डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। महानदी पर बना हिराकपुर पाम भारत के सबसे आइकॉनिक वाटर लैंडस्केप में से एक है और दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी का बांध भी है। हमारा राज्य का लगभग 47% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। ये बिल्कुल फर्जी फॉरेस्ट है, लार्जली अनकस्ट बाय मेजर टूरिस्ट एक्टिविटीज। ये सब इसको इको टूरिज्म और नेचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन गंतव्य स्थल बनाता है। हमारे ये सफर विकसित ओडिशा विजन 2036 2047 के दूर दूर से रोड मैप से निर्देशित है। पर्यटन इस विजन के प्रमुख स्तंभ में से एक है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमने जैसे हमारा नया सरकार आने के बाद हम जैसे एक अच्छा डबल इंजन सरकार के नाते और हमारा जैसा से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिग्दर्शन से उनका डबल इंजन सरकार के आते हुए जैसे ओडिशा को एक पूर्वोदय का परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ाने के लिए नॉट ओनली इंडस्ट्री वहां लाने के लिए विकसित बनाने के लिए जैसे उन्होंने हमें जैसे एक विश्व के लिए उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कंक्लेव के इसी आधार पर हमने टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पदक्षेप लेते हुए हमने भी करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा हम कैसे सारी टूरिज्म सेक्टर को हर क्षेत्र को हर डिस्ट्रिक्ट में हम आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से सारी बातों जानकारी भी अगले दिन में आप सबको निश्चित रूप से हमारा जो बेस्ट सीक्रेट जो गिफ्ट सीक्रेट हमने जो रखे हैं इसके आधार पर आज

0: को अपन कर दिए और निश्चित रूप से आप उसको लेते हुए हम आपके सहयोग से आगे बढ़ा सकते हैं।
1: चलित मास 10 तारीख सुधा बन्या क्षतिपूरण प्रदान राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी से कहते प्राकृतिक विपर्यय बेले सरकारी अधिकारी अवहेला अक्षमणीय
2: राज्य प्राकृतिक विपर्यय समय गोटे भिन्न साधारण समय त्रुटि विच्युति जाए कि प्राकृतिक विपर्यय जितने आसीचा को से समय लोक दुर्दशा भोगुंट से समय कौन त्रुटि विच्युति को प्रश्रय दिजिव ना ये क्रम सब छुट्टी बातिल हालापर जन आर छुट्टी ने जोग देले ना छुट्टी सारिकी आसिक काम जोग देले सस्पेंड हेले चांदबाली विडीओ बाबद गुड़िया त्रुटि विच्युति रिपोर्ट आम पाखे कलेक्टर हस्तगत है तुरंत सस्पेंड कलु बन्या बात्या मरुड़ी ये भलिया परिस्थिति रे जो भी सरकारी ऑफिसर त्रुटि विच्युति देखेबो सेटा आदो क्षमणीय नहो अपर पक्ष रे भलिया का भा घटना को छाड़ी देले सामग्रिक भाव रे आपनकु कहूची जे दिन राती एक करके दुई मास पर्यंत बालेश्वर भद्रक जाजपुर भलिया जिला रे मोटामोटी दुई मास पर्यंत विपरीत परिस्थिति रे बाकी 28 टा जिला रे 30 टा रु 28 टा जिला रे वृष्टिपात अत्यधिक वृष्टिपात एवं तजनित बन्या को नेकरि जो सरकारी अधिकारी माने काम कले तांकु मध्ये मु धन्यवाद देबा पई चाहूची जे से माने लोकंकर रक्षा कवच हेले ओडीआरएफ एनडीआरएफ अग्निशम विभाग कर्मचारी माने तले आंगनबाड़ी दीदी माने आशा दीदी माने जो माने आसन्न प्रसव महिला मान को स्थानांतरित कले एवं निरापद भाव में प्रसव करेले ये समस्त को धन्यवाद देउछि आउ संभवत आशा करूछु आमे जे मौसुमी जनित वृष्टिपात एवं बन्या समाप्त हेगला 261 कोटी टंका प्रथम पर्याय रे आमे आवंटन करिवा पई जिल्ला मान को दे सारिछु ता संगे पुनी 20 कोटी टंका आमे दक्षिण ओडिसा को दे सारिछु झारसुगुडा जिल्ला रे मध्य हीराकुद रो पछुआ पानी पसिकरी गुड़ी जगह रे चालो एवं डंगा नदी भीतर को पड़ी गला तापे मध्य क्षतिपूर्ण देचु एटा हला प्राथमिक रिपोर्ट रा आधार रे चूड़ान्त रिपोर्ट को मु कहिछि जिते शीघ्र पानी ड्रेन आउट हे जीवो दुई दिन हबो वृष्टिपात हे नै आउ दुई दिन हले पूरा परिस्थिति ठीक ठाक हे जीवो घर क्षतिपूर्ण हो धान क्षतिपूर्ण हो पनीपरिया क्षतिपूर्ण हो किमा मक्का रो क्षतिपूर्ण हो ये सबु रो क्षतिपूर्ण राशि एवं तार संगे संगे केउटी बासन कुसन केउटी लुगापटा मध्य धोई हे गला पानी रे पड़ी गला सेति पई क्षतिपूर्ण झारसुड़ा रे मु काली कहि के आइछि जे मानकर डंगा नदी भीतर को पड़ी गला बन्या पई जो मान जाल पड़ी गला मत्स्यजीवी मान तार मध्य व्यवस्था करने कौन सी दिग छाड़बू ना ये बन्या समय जो मैंने क्षतिग्रस्त होती से सब क्षतिग्रस्त आनुषांगिक पदक्षेप और क्षतिपूर्ण राशि 10 तारीख मुझे डेडलाइन दे दशहरा आसूची तेणु 10 तारीख भितर पहुंची गले टे कष्ट लाघव हम एक द्वितीय विषय है जो भाव में ओडिशा प्रत्येक वर्ष यह परिस्थिति आम देखु एथर परिस्थिति आहरी संगीन हो गला तेणु आपको वृष्टिपात हो पारे आगो मध्ये लंबा समय पर्यंत बन्या हो पारे तेणु ये प्राकृतिक विपर्यय प्रकोप को किमिति आम कमे पारू वर्षा को आम रोक पारू ना बन्या को रोक पारू ना कि तार प्रकोप को आम व्यापक भाव में रोकवाई जो जो संस्था सब अच्छा जातीय स्तर और आंतर्जातिक स्तर से आम संपर्क अच्छु
1: ओडिशा को संपूर्ण शिशु श्रमिक मुक्त करने उद्देश्य गांधी जयंती अवसर में 44 दिन व्यापी शिशु श्रम मुक्त ग्राम पंचायत सचेतनता अभियान आरंभ हो राज्य विभिन्न ग्राम पंचायत में शिशु श्रमिक प्रथा विरोध में जनसचेतनता सृष्टि करिबा यह अभियान मुख्य लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते
3: शिशु श्रमिक प्रथा एक सामाजिक व्याधि जहां आम शिशु और किशोर वर्ग पिला शिक्षा पाइबार मौलिक अधिकार वंचित करें पवित्र गांधी जयंती अवसर में ओडिशा को संपूर्ण शिशु श्रम मुक्त करने आम सरकार एक ऐतिहासिक संकल्प कर शिशु श्रम विरोध में राज्यव्यापी एक 44 दिनिया शिशु श्रम मुक्त पंचायत सचेतनता अभियान आरंभ होशार प्रति ग्राम पंचायत अभियान चलो आम समाज को शिशु श्रमिक भरी कुप्रथा को मुक्त करने केवल प्रशासन दायित्व नुहे यह आम समस्त एक सामूहिक कर्तव्य शिशु मान प्रकृत विकास ही आम समृद्ध ओडिशार लक्ष्य पूरण एक मुख्य आधार यही अवसर में यह महत्वपूर्ण अभियान में सामिल हवा को समस्त अनुरोध करसंतु आम समस्ते मिलमिशी एक शिशु श्रम मुक्त ओडिशा गठन सहायक हवा जेउठारे प्रत्येक शिशु स्वप्न देखिबा सहित ताको हासिल करिबा पई सशक्त होइ परिबो
1: समाचार दर्पण आज पई एतिकि प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग ओ उपस्थापनारे मु सत्यव्रत बेहुरा।

0: आकाशवाणी कटक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरमरों मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
4: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास

0: खास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR

0: एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
2: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरुमध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
3: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों

प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गुड इवनिंग।

चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुड़ी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे महजूद रहिछि। राज्य रे सारर कौनसी अभाव नहीं, तेणु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसलर वर्तमान आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु। एथिपाई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मेसिन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भावे रसीद संग्रह करंतु। गुजबरे विश्वास करंतु नाही, सार कलाबजारी को रोकंतु, मा माटीर सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करिबा पई भूलंतु नाही। कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସି ଆର୍ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଗାୟନ ରାଗ ମାଲବ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है।

0: हैं तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को

0: अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territory